असी अपने शरीर बारे सोचे कि कदी किसी ने अपनी जबान बारे सोचे? अगर परमात्मा ने सानू जबान ना दिती होंदी ते साडा जीवन कहो जिहा हुंदा? तन दौलत सुख दे समान कितने भी होन, रंग रूप सब कुछ होवे, पर जे जबान नहीं ते जीवन अधूरा है। तन गुरु अमरदास जी।

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना कि बहुता खाण वाला रोगी होता। भुखे घट मरते ने, बहुते खाण वाले ज्यादा मरते। ए रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राज रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ए भी खा लवा ओ भी खा लवा। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़ियां, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ये काम तो तू किया। पर ए रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी रस है, निंदा चुगली करनी भी रस है, ते सारे रस तू

बार न समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नूं जबान

मरा मरा जपदिया जपदिया ऐसी मालक दी मेर होई, बिरती लग गई मन जुड़ गया। ए रसना जेड़ी मरा मरा कहती सी, कृपा हुई मालक दी मरा मरा तू हुण राम राम हो गए। समा बीते ओही आरिया समाज दे सत रिखी फिर उस पासे आए, राम राम दी आवाज आ रही है। इधर उधर देखिया बंदा कोई नजर नहीं आंदा, एक मिट्टी दा ढेर है उत्ते कास उगे। अपनी शक्ति नाल

दूर होना कैसी मिसाल है। वैद वैद कहत ना मिटत रोग काहू को, द्रव द्रव कहे को द्रवे ना बिलास है। कोई कही जावे माया माया इन्ने करोड़ डॉलर आ नहीं जाने। ए मिसालां दे के महाराज भाई साहब कहते ने तैसे गुर ज्ञान गोष्ठ करत ना रहते आवे। गुरु की गल तो करी जावे तो अपनी रहत विच गल वो आवे ही ना, किदा नाम का स्वाद आऊगा। सब आखो सतना। तैसे गुर ज्ञान गोष्ठ करत ना रहत आवे, करनी प्रधान पान उदत प्रकाश है। महाराज कहते मेरे हिरदे च नाम उदों वस गया जदों मेरे गुरु ने मेरे सिर ते हथ रखिया। फिर की होया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे। नाम मन च वस जावे तो कोई दुख रह नहीं जे सकता। सब आखो सतनाम। ये बाणी का वचन है। जन्मां जन्मांतरां दे बोझ लथ जाणगे, आदां ब्यादां उपादां सब दूर हो जाणगी। ये बाणी का वचन है ना। गुर की बाणी जिस मन वसे, दुख दर्द सब ताका नसे। जन्मां जन्मांतरां दे बोझ सब लथ जाणगे, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिन लत। सतगुरों की बख्शिश का सदका कई बार ऐसे इदा प्रोग्राम बनते ने। आ प्रोग्राम जदों असी इधर विसाखी ते प्रोग्राम बनया, हुण दा टाइम बड़ा थोड़ा सी, प्रोग्राम दिलियों असी मन लै, पर गुरमुखां की प्रेरणा बस इदा ही चलिया। दो हफ्ते तो दो दो तीन तीन दिन होस्टन असी चार दिन सोम मंगल बुध वीर ही कर सके, इन्ना की हाजिरी उत्थे भरी। फिर आनंदकार ही सी न्यू मैक्सिको, दो आनंदकार उत्थे आ गए, उत्थों आ गए अरिजोना। आ जड़े दर्शन तुहाडे प्रेरणा गुरु वालों हुंदी है। ये सत्कार योग प्यारे वीर सरदार दुर्लभ सिंह जी, हाँ जी साहब प्रहलाद सिंह जी, इन्हां दी कृपा नाल इन्हां दी प्रेरणा नाल आ दर्शन पाटे। 85 विच असी आए सी, उदों बाद हुण समां मिलिया। 85 तो बाद उधर आउंदे रहे न्यू जर्सी। इन्हां गुरमुखां नूं दिल्ली मिले, हाजरियां बंगला साहब भरनियां, तुसी उत्थे आओ। इन्हां फिर इन्हां दे बच्चे काका साध सुरेंद्र सिंह, इन्हां वालों प्रेरणा होई। असीं तां बहुत जोर लाया भी टाइम बड़ा थोड़ा है, ऐतकी रहण दिओ, फिर खुले टाइम ते आवांगे। जो तुहाडे वालों सानूं प्यार मिलिया है ना, इत्थे एक आ गुरुद्वारा सी जिथे कोई झगड़ा नहीं, ये सच है। यानी आ गुरुद्वारा एक ऐसा है जिथे कदे झगड़ा नहीं होया। हुण इथों दी जो असीं आए लौंग आईलैंड विसाखी ते, सानूं उत्थों पता लग्या भी 20 गुरुद्वारे जिन्हां तुहाडी नकल कीती है उन्हां सिलैक्शन कीती है, इलैक्शन नहीं कीती, झगड़े तो बच गए। नहीं तो गुरुद्वारे का हाल तो वह होया जांगा चलदियां। तुहाडे ते गुरु की कृपा है, गुरु की मेहर होई है, तुहाडा प्यार सानूं नहीं भुलदा, गुरु बख्शिश करे। इन्हां की समा कल दा दिन हाजरी भरनी है ते परसों नूं सेवकां ने टंटो चले जाना पहली फ्लाइट विच। इन्नी हाजरी दसो गुरमुखां नूं, इह भी एक सेवा जी। सब आखो सतनाम। इहदा भी फल है, आओ गुरु के घर, आओ कीर्तन सुनो, आओ गुरु हाजरियां भरो गुरु दियां। कल दा दिन है, फिर आपां कल दा दिन हाजरी भर के फिर छुट्टियां लवांगे। आओ हुण आपां धुनी ला लईए, सारे प्यार नाल बोलो। समय सिर ही समाप्ति होएगी, कोई रसना खाली ना रवेगी।

गात बन के आप सब आए हो। गुरु दी गोद चों एहो जा सौदा खरीद के जाइए, इस सौदे नूं साडियां कुल्लां तक वरतण ते लाभ लैण। कई बारी बड़ी खुशी हुंदी है जदों कोई कहिंदा आ फलाणी वाणी मैनूं मेरी दादी ने कंठ कराई है, अज कुल्लां ओह खा रही है, लाभ लै रही है। सारे भाई इंज गाहक बन के बैठे के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप विच विराजमान साईं दी दुकान तों सौदा खरीद के जाण। वणज करो वणजारे हो, वखर लियो संवाल, तैसी वस्त विसाहिए जैसी निव है नाल, अगे शव सुयाण है लैसी वक्त समार। सच वपार करो वपारी, दरगह निव है खेल तुम्हारी, ए तन अखुट ना निखुटे ना जाए, पूरे सतगुरु दिया दिखाए। साचा तन गुरमत्ति पाए, काचा तन सोने आवे जाए, किन्ही बन जया कांशी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बन जया नाम गोविंद का, ऐसी खेत हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़या निर्मोलक, छूट गई संसार। ओ सच्चा व्यापार करण आए हो, करके जाना खाली ना जाना। पिछले वीरवार तो प्रकरण चल रहा, खालसा करणी का ना है, खालसा गुणा का ना है। एक गुण जिदी विचार चल रही है, खालसा सो निर्धन को पाले, ते पांच तरह का निर्धन नूं पालना है। एक तरह का आप जी सुन चुके हो, अज दूसरे तरह की बारी है। केवल बोल के लंघदे हां, पहला निर्धन नूं पालना, गुरु का सिख दसवंद कढे, गुरुद्वारे लई भी देवे, लंगरां लई भी देवे, किसे दी विद्या लई साधन बनना, किसे गुरसिख आर्थिक पक्षों डिगा उहदा साधन बनना, किसे विधवा बीबी का कोई घर का साधन किसे रूप च बनना, यह भी निर्धन नूं पालना। दूसरा निर्धन नूं पालना, महाराज सेवा लैण आओ। एक बारी ये पंक्ति पढ़िए पहले सारे जी।

मारने शुरू हो गए। जदों उन्हें बेनती की थी, कहन लगा जी सानू भी इंज सिखाया ध्यान देना। मैं क्या असी सत्कार कर रहे हैं जिन्हें तेन सिखाया इंज, पर जिस स्कूल का तू विद्यार्थी बन गया इस स्कूल में जे किसी नु कुछ सिखाना नहीं है ना, मास्टर बन के नहीं सिखाना, निमाणा सिख बन के सिखाना। ये बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। कई बार सच नु भी सेवा नु भी होमे की मैल लग जाए। हुण तुसीं किसे नूं वाजा सिखा रहे हो है जी, आ जांदा बदोबदी भी मैं सिखाण वाला सिखण वाले, मैं मास्टर ते विद्यार्थी नहीं। एक निमाणा सिख बन के बहुत अंतर है कि शुक्र है महाराज मैनू इस योग बनाया ही, तेरी दित्ती दात मैं सिखा रहा। एक कुछ मास्टर बन के सिखाना है हमें, एक निमाणा सिख बन के किसी नूं कुछ गुण देना, यह थाए पैंदा इहो जिहा थाए पैंदा प्यारिओ कि इन्नी तेजी नाल व्याज वधदा संभालना ही औखा। जुगती आ गई, जुगती आ गई। अजनियां बीबियां वीर कोई अगों किसी नूं कुछ सिखांदे वी हो, टीचर बन के मास्टर बन के ना सिखायो, ये मैं है। कहण नूं टीचर कोई कहेगा लफ्जां च, मास्टर कहेगा, प्रोफेसर कहेगा, पर सिखाउण वाले नूं जे गुरमत दी क्लास चढ़िया, सिखी दी क्लास चढ़िया, ते निमाणा सिख बन के सिखाउण। प्यार नाल आखो सतनाम। कई बारी सेवा नूं भी मैं भी मैल लग जांदी, गल तां नहीं टिकाणी लगदी। कई बारी सच नूं भी हौमे दी मैल लग जांदी, मैं सच्चा बणा हौमे लगी तेरी कृपा ना सच। गुरु तेग बहादुर कहते भाई फगू एक घर की सेवा तू सू भेजी नहीं, ध्यान देना है तो सचा साडे वर्गा च अंजाण हो छाती ताण के कहेंगे महाराज मैं भेजा रहा, भेजी क्यों नहीं, मैं सारे नहीं भेजा मैं सचा सी। पर सच न मैं नहीं लगन दी, सच न भी है लग जाए भेज गया। सचा होने के बावजूद भी छाती ताणी नहीं, आ हाथ जोड़ के कहिंदा सतगुरु तुहाडा दास जो कार भेटा भेजदा रहा, फिर भी कोई अनजाण पुणे च भुल हो गई ते बख्श लैणा। सिखी समझ साखी नाल मतलब नहीं, कुछ लैणा विच जिन्हां दी सच नूं भी मैं भी मैल लग जांदी है, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਭਾਈ ਫਗੂ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੈਂ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਭੇਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੁਣਾ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਾਲਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵਿਹੜੇ ਚ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਲਪੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਆਖਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ।

वो धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है कि बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है? मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टूटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

ए वाणी महापुरुष की निज कर वासा हो गुरबाणी गावो भान अमृत वाणी अम्यो रस अमृत हर काना अमृत वाणी अम्यो रस अमृत हर काना मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो गुरबाणी गावो पाई उपदेश सुनो तुम गुर सिखो।

सफल हो, मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना। गुरबाणी गावो पाई सुख सहज आनंद गाना, तब जपते हैं दुख जाए

तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म। छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया। छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही तां रिद्धियां सिद्धियां नूं प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर लई। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं तारदे होए जदों वली कंधारी जेड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिल्ले कट्टे, तपस्या कीती, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने जोर दे नाल पानी बंद कीती बैठे। जेड़ा मेरा चेला होवे उसनू ए पानी मिल सकदा है। धन गुरु नानक पातशाह क्योंकि जगत जलंदे नू थारन जो आए सन, जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नू दुख दिता जा रहा है, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है, ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नू मारिया नहीं, पापी नू तार देना। जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी, पुन्ना नू पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वली कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बह के बड़िया रिद्धियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया, आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नू भेजिया, जा मरदानिया पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है तो आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी, तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहे, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नूं पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह अच्छा अहंकार दूर जो करना है। मर्दानिया आ दो पत्थर पुट, सत करतार सत करतार नाम जपदिया जदों ए दो पत्थर चुके तो विचो अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी सारा

सारा तले आ गया, ऊपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया, मेरिया शक्तियां दा इसनू पता नहीं, मैं की कर सकदा हां। आ मैं हुणे दसदा हां, अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मर्दाना कहन लगा, महाराज कृपा करो, मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, मर्दानिया तू करतार नू चेते रख, जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहंदे हन ना, उन्हां दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एडा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है, ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती, कृपा कीती, कोट ब्रह्मंडा दे बांधे जां आपने नजर कीती, तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया, तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता, ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा है। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी, धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है, भई मैं तां कखों होदा हो गया, एडिया शक्तियां दा मालक सा, पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा है ए मेरे अहंकार नू दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिद्धियां सिद्धियां अहंकार ते, क्योंकि पुन्ना ते रीजदा है रब। हो सकदा है मैनू तारन लई मेरिया रिद्धियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनू तारन आया होवे। मन नीवा हो गया, फिर तले आके गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे चरणां ते मस्तक रख दिता, कदम बोशी की, मत्था टेकिया। ओ साईं दिया प्यारिया, ओ रब दिया बंदिया, मैनू जापदा तू आप मैनू तारन लई इत्थे आया। मैं ता संसार ते आके अहंकार मेटन आया सां, पर रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके अहंकार दी पंड होर बंद होर वड्डी कर ली, क्योंकि जितनी खुदी वधती है अहंकार वधता है, दुख भी वधते हैं। हजूर का बचन है, खुदी मिटी तब सुख भए, जदों खुदी मिट गई तां सुख ही सुख है। जितने तक अहंकार है, जब लो पोट उठाई चले तब तक दाम भरे। हजूर का बचन है, जितने तक अहंकार दी पंड छिरते है, दरगाह विच लेखा मंगया जावेगा, बिना हिसाब दिते कोई लंघन नहीं देवेगा। जिस तरह सामान कोल होवे तां फिर टैक्स देना पैंदा है, चुंगी देनी पैंदी है, ते जे सामान ही नहीं है तां तू लंघ जा, कोई तैनू पुछन वाला नहीं। तो हजूर कहंदे हन, ऐ गुरु के लाल, जे वाहिगुरु ने तैनू संभालिया है, कोई समर्था दिती है, ता ओ अकाल पुरख वाहिगुरु दा बंदा बन के नीवा होके चल, उस समर्था विचो वंड के शक। ओ पंड अहंकार भी गुरु अगे रख दे, जे संसार ते आउना सफल करना ही, ता हजूर कहंदे न, जब तक पोट उठाई चले तब तक दाम भरे, पोट डार गुर पूरा मिलिया ता नानक सुख दे। पोट गुरु अगे जिन्हां ने रख दिती ते फिर सुख ही सुख है। धन गुरु नानक पातशाह पूरने पाके दस रहे हन, भाई सब कुछ पाके भी गुरसिख ने ए अरदास करनी है, आओ मैं भी तुहाडे लई करदा हां। गुरु नानक सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हन, भाई मैं भी तुहाडे लई करदा हां, तुसी भी सारे मिलके

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा संसार तार दे होए जिथे जिथे भी गए वड़े तो वड़े पापी नू किवें तारिया जिवें सज्जन नू संत बना दिता भूमिए चोर नू साधु बना दिता आप ही नहीं अनेकां नू गुरु नानक दे चरणां नाल जोड़न वाला बना दिता दीपालपुर दे कोड़ी दे पास गए ता उसनू भी फिर यही शुभ उपदेश दिता पाई जिस वाहिगुरु ने तैनू सोना ए मनुच्छा जन्म बख्शिया सी अखां नक कन मूह आरोग कंचन वर्गा शरीर दिता सी जे तू शुकराना कर दो जे तू उसका सिमरन कर दो ता आज तेरी ए हालत ना होगी बचपन खेडा विच जवानी विकारा विच तै बतीत कर दिती उस अकाल पुरख वाहेगुरु नू तू भुल गयो विसार दिता ते जदों तू विसारिया ता फिर दुखा ने आ घेरा कत्या ते अज तेरी ए हालत हो गई याद रख जिस तरह हुन तेरा शरीर कोड़ी है ना तैनू कोई नाल नहीं बैठन देंदा शहरों बाहर कढ दिता है लोगां ने तैनू जदों तू पंज भूतक शरीर त्याग के जावेगा आत्मा तेरी कलंकित होई होवेगी दरगाह विच भी तैनू कोई कोल ना बहन देवेगा क्योंकि कोल ओही बैठते हैं जिन्नी तेरा नाम ध्याया धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने जिसना ने अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम ध्यावना कीता है सिमरन कीता है इसलिए उन्हां दा ही आउणा सफल होया है।